0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff communication station.
1: The following is a paid program. The views and opinions do not represent those of CKJS or its advertisers.
2: Sangeet.
3: रूदी खुराक है,
2: आत्मा दी आवाज है,
3: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है।
3: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है,
3: जिंदगी सांझ है, खिमा है,
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है।
3: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
2: कल्चर ऑफ पंजाब।
3: कल्चर ऑफ पंजाब।

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: कुछ लोग हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते और कुछ अल्फाजों में भी इंसानी रूह डाल देते हैं। मसीहा हो तभी जज्बात की धड़कन को फौरन जान लेते हो, कभी अल्फाज के नब्जों को अपनी नर्म सांसों से छूकर भूल जाते हो कि इन लफ्जों के सीने में भी आखिर दिल धड़कते हैं, ये बात करते हैं, सुनो आवाज देते हैं, ये जज्बे सांस लेते हैं। तो जब तुम दूर जाते हो, जब इनको भूल जाते हो, तो धड़कन रूठ जाती है, तो नब्जें डूब जाती हैं, ये सांसें टूट जाती हैं। मसीहा हो तो फिर इनको शिफा तुम क्यों नहीं देते।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: चल मेरे साथ ही चल, ए मेरी जाने गजल, इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल चल। हम वहाँ जाएं जहाँ प्यार पे पहरे न लगे, दिल की दौलत पे जहाँ कोई लुटेरे न लगे। कब है बदला ये जमाना, तू जमाने को बदल चल। अपने मिलने पे जहाँ कोई उंगली न उठे, अपनी चाहत पे जहाँ कोई दुश्मन न हंसे। छेड़ दे प्यार से तू साज़े मोहब्बत ए गजल चल, चल मेरे साथ ही चल। वेल दिस केम फ्रॉम द ग्रेट राइटर नीदा फाजलीज़ पेन, वेरी प्योर, वेरी डीप, वेरी इंटेंस।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: हम तो मसरूफ थे अपनी तन्हाइयों में, मुद्दतों बाद इतने प्यार से किसी ने पुकारा है। एक पल ठहरे, रुककर सोचने लगे, इतना मीठा तो कभी अपना नाम न था, क्या सच में ये नाम हमारा है? ये सच है, रेगुलरली रूटीन में बस ऑर्डिनरी सा लगता है खुद का नाम, इनफैक्ट खुद का इंटायर वजूद ही। बट जब वो खास इंसान आपके नाम को प्यार से पुकारे तो अपना नाम भी खास लगने लगता है ना?

आज हम हैं, कल हमारी यादें होंगी, जब हम ना होंगे तब हमारी बातें होंगी। अगर कभी पलटोगे जिंदगी के ये पन्ने तो शायद आपकी आंखों से भी बरसाते होंगी। जी हाँ, यकीनन बरसाते होती हैं, बट सिर्फ उन लोगों की याद में जो अपनी जिंदगी को एक अलग परिभाषा देकर जाते हैं। हम आप जैसे ऑर्डिनरी लोग जो अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीते हैं, हम ये उम्मीद रखें कि हम ना होंगे तो कोई हमें याद करेगा, गलत एक्सपेक्टेशंस हैं।

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: खामोश रात है, साहिलों का साथ है, कोई दिल के करीब तो किसी के दिल पास है। सफर तन्हा है फिर भी दिल में कई जज्बात हैं। कभी खुशियों की महफिल, कभी गम की बरसात है। यही है जिंदगी की हकीकत कि कहीं महकती सुबह तो कहीं अंधेरी रात है। वेल दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि कभी भी जिंदगी एक सी नहीं रहती। उतार चढ़ाव, दुख सुख आते ही रहते हैं, चाहे हम इनसे कितना भी भागने की कोशिश करें, 'cause they are the part and parcel of our existence।

कहो कबीर जे कृपा धारै दे सच्चा निशाना आसा हिंदू तुर्क कहां ते आए किन ए राह चलाई दिल मैं सोच विचार गवा दे पिस्त दोजक किन पाई काजी तै कवन कते बखानी पड़त गुण ते ऐसे सब मारे किन्हू खबर ना जानी रहाओ सख्त स्नेहो कर सुनत करिए मैं ना बदोगा पाई जौरे खुदाए।

का की मात पिता कहो का को कवनपुर की जोई, घट फूटे को बात ना पूछे काडो काडो होई। देहोरी बैठी माता रोवै, खटिया ले गए भाई, लछटकाए त्रिया रोवै, हंस अकेला जाई। कहत कबीर।

जे अत क्रोप करे कर तहाया ता पी चीत न राख समाया चिंत भवन मन पर्यो हमारा नाम बिना कैसे उत्तर सपारा देह बिमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण रवै कबीरा आसा हज हमारी गोमती तीर जहां बसै पीतंबर पीर वाहो वाहो क्या खूब गावता है हर का नाम मेरे मन भावता है रहाओ नारद सारद करै खवासी।

बजावनहारो कहां गयो जिनेहो मंदर कीना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिगल पए संग तेरे इंद्री का बल थाका चरण रहे कर टर्क परे है मुखो नानक सहबाता थाके पंच दूत सब तस कर आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत धर रमते मृतक पए दसै बंद छूटे मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर ध्यावै जीवत बंधन तोरे आसा एक तुके चार सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा बिष्णु महादेव शलिया मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन त्रिभवन डसियले गुरप्रसाद डीठी रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो भाई जिन साच पछानिया तिन सरपनी खाई सरपनी ते आन शूश नहीं अवरा सरपनी जीती कहां करे जमरा एह सरपनी ता की कीती होई बल अबल क्या इस्ते होई एह बस्ती ता बस्त शरीरा गुरप्रसाद सही तरे कबीरा आसा कहां स्वान कौ सिमरत सुनाए कहां सागत पै हर गुण गाए राम राम राम रमे रम रही है सागत स्यों भूल नहीं कही है रहाओ कौआ कहां कपूर चराए कह बिसियर कौ दूध पी आए सत संगत मिल बबेक बुद्ध होई पारस परस लोहा कंचन सोई सागत स्वान सब करे कराया जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया अमृत लै लै नीम सिंचाई कहत कबीर ओआ को सहज ना जाई आसा लंका सा कोट समुंद सी खाई तेह रावण घर खबर ना पाई क्या मांगो कि थिर ना रहाई देखत नैन चल्यो जग जाई रहाओ एक लख पूत सवा लख नाती तेह रावण कर दिया ना बाती चंद सूरज जाके तप्तर सोई बैसंतर जाके कपड़े धोई गुरमत रामै नाम बसाई आश्चर्य रह ना कथू जाई कहत कबीर सुनो।

एक अचंबा सुनो तुम भाई, देखत सिंह चरावत गाई रहाओ। जल की मछली तरवर ब्याई, देखत कुतरा लै गई बिलाई। तले रे बैसा ऊपर सूला, तिसके पेड़ लगे फल फूला। कोरे चार भैंस चरावन जाई, बाहर बैल गोन कर आई। कहत कबीर जो इस पद बूझे, राम रहमत ते सबके सूझे।

22 चौपदे तथा पंचपदे आसा श्री कबीर जीओ के तिन पदे अठ दो तुके सत एक तुका एक एक ओंकार सतगुर प्रसाद बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया दस मास माता उधर राखी।

सारा राम राय सो दूलो पायो अस बड़ भाग हमारा। सुर नर मुन जन कौत के आए कोड़ ते तीसो जाना, कह कबीर मोए ब्याह चले है पुरख एक भगवाना। आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डराओ रे सखी सहेली ननद गहेली, देवर कै बरह जराओ रे। मेरी मत बौरी मैं राम बिसारे ओ, किन बिद रहन रहो रे। सेजा रम तो नैन नहीं पेखो, एहो दुख का सौ कहो रे रहाओ। बाप साहब का करै लड़ाई, माया सदमत वारी, बड़े भाई कै जब संग होती तबो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को झगरा, झगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधया, मैं राम रमत सुख पाया। आसा हम कर सूत तने नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे। मेरी जेहबा बिसर नैन नारायण, हृदय बसै गोविंदा, जम द्वार जब पूस बवरे तब क्या कैस मुकंदा रहाओ। हम गोरू तुम ग्वार गुसाई, जन्म जन्म रखवारे, कबहू ना पारो तार चरायो, कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं का सीख जुल्हा, बूजो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे भूपत राजे हर सौ मोर ध्याना। आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधान। बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हरलीन रहाओ। नैन देख पतंग उर्जै पास ना देखै आग, काल फासना मुग्ध चेतै कनक कामन लाग। कर विचार बेकार पर हर

नित नित मेंढक नावै, जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जो नी आवै। मनो कठोर मरै बानारस, नरक ना बांचिया जाई, हर का संत मरै हाड़ंबै, ता सगली सैन तराई।